0: होता है।
1: आके याग्निक कुमार सानू देयर फ्रॉम द मूवी कुछ कुछ होता है, अ मेगा हिट इन इट्स टाइम। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, नॉट अ शाहरुख खान मूवी, इस टाइम विद जूही चावला।

0: है सर्जन? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
2: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।